आणि का नो इंग्लिश एलेन इज या बट तिगरी ने ट्राई तो मीज या वर्ड ए जी इज या मिश लेमिट ना अब हिंदी कमान धेर के ना गेले धेर बाला लो नगदम तिबिल ने ना सो हां एंटा कोम कोम तिबिल ए जी कम जी लेमिट ना इज या सी मरहबा धेरिल ना मरहबा शो नगदम धेरिल ना शो अब हिंदी कमान निसम कमान महाराल हिजी टिगरी ना नैना सेलेसी तो कमाला ना

मिलते शे नसर ते आदे हिंदी में मरण मचियो निसोम कमान आवाज मरा फरियम बरंतु इलाम शो आउ हिंते गरम धारे हादे में मर सुरे का ती भाल दो बिल्कुल हतत इलाम ए जी नाते मोबाइल कुछ रे मिसोम से नियम शो अब जी दो इलाम इजा सुरे का अब जी नहना बरंतु इलाम मैं चल लाना क्यों मैं आलो मैं चूत रहे नहना लाना कोल सब आलो अब जी चगम ती भाले लन मैं चो इलना शो मचियोम तहगिसोम कुल्लू गुरवेत ना वन ना बून गेरोम नहना मिगबी गेले रेडी गेरना कब सतायो मचियोम कब ऑटो बस कहीं ना अमची ना बटैक्सी गेरना शो वाहन सब कोफिलोम ते मेसी ना ते देरी ना बून गेले सत्योम थे जी इलम इसे कमजी बहाली अमजी इलना शो बका कसिलोम निसोम कमन कुल्लू मेमरान अबजी जोलो हिंदी मेमरान असरते हमुशते आमितन लालित रहे सरियों मुल कहीं लों जुखों ने मेमर बहानते आमित आमिलेसन नहना सेलेजिनेर ना कोलों असरते हमुशते आमितन लालित रहे असरते शोमन ते इसरा इसरा ना दे कमजी सरियों कहीं लों कोलों